0: 99.9
1: ऐसी गीत तुम्ही हो महबूब मेरे। तो सुन रहे अपना मन पाता पंजाबी गीतों का प्रोग्राम मेला गीतों का स्वाद 99.9 FM तो श्याम कुमार दे नाल। चलो अगे एक होर गाना, बेहतरीन बोल बेहतरीन आवाज़ वो सुनते हैं।

0: हेलो
1: माइसेल्फ गोशा मैनू तुसी बड़े चंगे लगदे क्योंकि थोड़े गाने विच नहीं हुंदा कोई भी शोशा। एक मिनट साहिल बिड़े।
2: हाँ जी
1: बिड़े अदा कि जे थानू कोई कुड़ी पसंद आ जाए ना उन्हूं कदे भी जिंदगी विच प्रपोज ना बालां च हाथ मार के ना करियो।
2: ठीक है
1: पता क्यों?
2: हाँ जी
1: कुड़ी फसे ना फसे तुहाडे बालां दे विच हाथ जरूर फस जाणा। मैं तो नहीं जाना मैं पहला ना दी गेम पाऊंगा मैं खेड़ जाऊंगा।
3: केड़ी गेम पाउनी है दस?
1: आज गोशा शरे बाजार दे विच दोनों पड़ावां दे विच कबड्डी कराऊंगा। मैं आज बनूंगा डाफड़ी तुसी दोनों पड़ा करोगे लाइव कबड्डी सारी दुनिया देखोगी आज थोड़े दोनों का प्यार किदां दा देखो कैसी सुरीली कबड्डी कराण जा रहे हैं। दे दो मैनू अपना माइक।
3: लो जी
1: बड़े खड़ जाओ इत्थे कबड्डी सी कबड्डी